0: भविष्य उज्जवल छ।
1: बोल्यो हरियो बोल्यो सुनिराखो है।
2: सुन नीलो आकाश साइन्स नीलो नै एक्सट्रीम एनर्जी एक्सट्रीम अनसन एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: अरे वाह देश के स्वादिलो रेडियो रेडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान इसमें छ।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: कहाँ गए छु यो गांटे मुला हरे? ए गांटे मुला।
0: I'm कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल। ए फर्सी,
1: किन गान्टे मुला?
0: मेरो साह्रै धेर सुत्ने मानिस छ भने मलाई भोलि बिहान 5 बजी उठाइदेऊ है।
1: हस्, 5 बजेपछि खबर गर्नु, म उठाइदिइहाल्छु नि।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो अडियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: मर चुकी क्या हो?
2: घर में बुढ़ी को लात खाए पछि आज के खाइस भन्दा लेग पीस खा रहा को भन्ने को कमी छैन रे हाम्रो देश में।
0: कॉमेडी कैप्सूल
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: मात्र पुग्छ, न केही चताना भई न केही कोडारा। एकान दुकान मैदान भयो चारैतिर, एकान दुकान मैदान भयो चारैतिर।
1: देशकै स्वादिलो रेडियो, रेडियो अडि

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: यो पालोमा त हिन्दी एसएमएस पठाएछ। गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, क्या चीज है? गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, जिससे कागज चिपकाए जाते हैं।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: एडियो ऑडियो एक कान धोई का मैदान। यस मैं छ मजा
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए फर्सी, त्यहाँ हेर त, ऊ त्यो केटी मलाई हेरेर मुस्कुराइरहेछ।
2: त्यो त के हो र, जब मैले पहिलो पटक तिम्रो अनुहार हेरेकी थिए, तीन दिनसम्म मैले हाँसो रोक्न सकेकै थिइन।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: एडियो एडियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: कान्ति मुला
2: किन फर्सी?
1: गीता माथि हात राखेर भन त कुरा के हो?
2: भन्दिन।
1: भन।
2: भन्दिन।
1: छिटो भन।
2: भन्दिन।
1: किन नभन्ने?
2: गीता बुढाले मार्दैन।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। एक कान दुई कान मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: संस्था, इससे पहले कि हम अपनी मोबाइल कंपनी में आपको नौकरी दें, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो पहले ये बताइए कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है?
2: कार्टून नेटवर्क।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: तुझे पता है बंता, नौकरों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
2: भाई क्यों, क्या हुआ?
1: मैंने और मेरी बीवी ने प्यार करने का एक कोड रखा था। वो कोड था चलो चीनी खाएं, और ये कोड मेरे नौकर ने सुन लिया। एक दिन मेरा नौकर मेरी बेटी के साथ प्यार कर रहा था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
2: अच्छा, फिर तूने क्या कहा?
1: मैंने अपने नौकर को कहा, अबे साले ये क्या कर रहा है? मेरा नौकर कहता, चीनी खा रहा हूँ मालिक। मैंने उसे कहा, चीनी ही खानी थी तो खुली बोरी से खा लेता, नई बोरी खोलने की क्या जरूरत थी।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: संता जी, आपका घर इतना दूर है कि मुझे 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा आपका ये पार्सल पहुंचाने के लिए।
2: ओ पोस्टमैन जी, आप इतनी दूर क्यों आए? इससे अच्छा था कि आप इसे पोस्ट ही कर देते।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: पप्पू तुम हिस्ट्री में फेल क्यों हो गए?
2: पापा सभी क्वेश्चन उस टाइम के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कामेरी कैप्सूल।
1: वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ।
2: वर मांगो वत्स।
3: प्रभु जी, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे वधु चाहिए।
0: कामेरी कैप्सूल।
4: अडियो अडियो। एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा।
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: उस लड़की का क्या हुआ जिसे तू प्रपोज मारने गया था?
2: ओए बंता, मैंने उसे प्रपोज मार दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो उसने क्या कहा?
2: वो बोली, मैं तेरे से एक साल बड़ी हूँ।
1: अच्छा, तो तूने क्या कहा?
2: मैंने कहा, कोई बात नहीं सोनी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: डॉक्टर साहब, मैं सुसु 6 बजे करता हूँ और पॉटी 7 बजे करता हूँ।
2: अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है?
1: पर डॉक्टर साहब, मेरी आँख 8 बजे खुलती है।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: ढुक्कैमा
1: फोन नम्बर चाहियो 479021।
2: अरे वाह, देश के स्वादिलो रेडियो रेडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान इसमें।

0: जब सावित्री कञ्चनजङ्घा रहन्छ तपाईँको साथ,
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ।
2: अरे वाह, देश के स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान।

0: कमेडी क्याप्सुल
1: हैन झोक्राको चाहिँ किन हो नाति, एउटा आई लभ यू लेखेको मेसेज पनि पढ्न नपाई मर्छु कि जस्तो लागेर क्या हजुर।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: एडियो ऑडियो
3: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: सुहाउँछ
1: कमेडी क्याप्सुल
2: हैन के हो हजुरबा घाँस काट्न जान ए भन्दा रिसाउने नातिनी आज नाक काटेर गई
1: कमेडी क्याप्सुल
3: दियो दियो एकान दुई कान मैदान यसमै छ मजा
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: हैन के भयो ससुराबा?
2: म अल्छी भएर अल्छी गरेँ कि अल्छी गरेर चाहिँ अल्छी भएँ, खै के भयो के भयो?
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो एक कान धोई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: हैन के भयो सन्दीपज्यू?
2: साथीलाई पैसा सापटी दिएको, आफ्नो माग्ने बानी छैन, उसको फिर्ता नगर्ने बानी रहेछ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। एक कान दुई कान मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: हाँस्नु कि रुनु, बेरोजगार भएर होला कि लोभी पनि यतिसम्म भयो कि फ्रुटी खाँदा पनि चार पाँच चोटि टर टर नपारी बट्टा फाल्नै मन लाग्दैन।
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: दियो दियो एक काम दो काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए कान्टे बुला,
2: किन फर्सी
1: त्यस्तो रक्सी खाने मान्छे कसरी छोड्यो?
2: पुरै बत्तल सकाएर छोडे नि।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: एडियो एडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: मैले यो हाम्रो समाजलाई कहिल्यै बुझ्न सकिन। केटीहरूले चाहिँ छोटो लगाए मोडर्न, अनि लामो लगाए फेसन रे, अनि हामी केटाहरूले चाहिँ छोटो लगाए भाइको, अनि लामो लगाए चाहिँ दाइको रे। कोही तरिका हो?
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो कान धोई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: कटियस ने मजे जरे मर चुकी क्या हो
2: घर में बुढ़ी को लात खाए पछी आज के खाइश बंदा लेट पीस खा रहा को बनने को कमी छैन रे हाम्रो देश में
0: कॉमेडी कैप्सूल
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: यो पालोमा त हिन्दी एसएमएस पठाएछ। गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, क्या चीज है? गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, जिससे कागज चिपकाए जाते हैं।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: जियो जियो
3: एक काम दो काम मैदान, इसमें छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।